0: बस अमेजिंग पता नहीं इन्हें क्या एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी हुण यू नो पता नहीं एक जादू जिहा ही आ सुनो तो ऐ लगता कि बस भी सुनी चलो तो बंदा थकदा ही नहीं। सो ओके लैके चलते हैं थोनों कुछ एक स्पॉन्सर्स को साढ़े नाल सरांश जी जुड़ रहे हैं यूनी ग्लोबल एडवाइजरी तो। पहला तो सरांश वेलकम सर, की हाल है?
1: बहुत कर चुके हैं। अभी गवर्नमेंट लाइक लोन दे रही है 50,000 से 1,70,000 डॉलर का। आप स्किल डेवलप करते हैं, गवर्नमेंट का लोन बिना क्रेडिट चेक के बिना गारंटी के हासिल करते हैं। ऐसा लोन आपको कनाडा में नहीं धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 0% है 2 साल तक और उसके बाद भी 2.5% ब्याज है साल का। और मतलब कितनी देर बाद आप देना स्टार्ट कर रहे हैं लोन को, और लोन 0 से लेके 2.5% है जो कि कहीं नहीं मिलना आपको।
0: ਸੋ ਲੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਸ਼ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੋਨ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਸਰਾਸ਼। ਸੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਪੀ ਆਰ ਹੈ ਜਿਨਕਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੈ, ਊਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਫੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰੇ और आप स्किल भी हासिल करते हैं, आपको एंड में सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे बिजनेस का कोर्स करें चाहे अकाउंटिंग का करें, और साथ में आप 50,000 से लेके 170,000 डॉलर हासिल करें और कहीं भी आप उस पैसे को यूज कैसे भी कर सकते हैं।
0: वेरी गुड। एंड इस दे नाल नाल जो लोन है ये तो चलो मिल गया, पर इदियां की रिक्वायरमेंट्स ने? कोई क्रेडिट चेक, कोई थोड़े को घर होना जरूरी है, की एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ने?
1: हाँ जी, जहाँ पे बैंक नहीं गवर्नमेंट लोन दे रही है तो फिर इसलिए कोई क्रेडिट चेक नहीं है, कोई गारंटी, कोई गारंटर या ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। और लाइक तो अगर घर नहीं है मैटर ही नहीं करता, क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है, आपके बच्चे कितने हैं? क्वेश्चन क्या है, आप मैरिड है? क्योंकि जैसे आप मैरिड है आपके बच्चे ज्यादा है, ये क्वेश्चन है, इस पे लोन बेस करता है तो लोन बढ़ जाता है। लाइक अगर फैमिली ऑफ 5 है तो लोन 170,000 डॉलर चला जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं आसान से, फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, और लाइक बिना क्रेडिट चेक 0% पे लोन हासिल करते हैं।
0: सो अच्छा, जे बच्चे ने तो थोनू और बेनिफिट है?
1: हाँ जी, और बच्चे अगर छोटे ने 11 साल तो और ज्यादा बेनिफिट है, आपकी कॉलेज की फीस ही बाहर ही बाहर कवर हो जाती है लोन आपका सारा।
0: ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਆਏਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 80,000 ਡਾਲਰ।
0: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
1: ਔਰ ਉਸਮੇ ਸੇ 80,000 ਮੇ ਸੇ 20,000 ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ 4 ਹੈ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ 11 ਸਾਲ ਸੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਆਇਆ, ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੀਸ ਅਲੱਗ ਸੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਾਮ ਹੈ 8 साल से कर रहे, कोई डॉक्यूमेंट आपका एडिट नहीं होता इसके अंदर, कोई कमीशन नहीं है, कोई 2 नंबर ही काम नहीं है तो कमीशन भी नहीं है, ना कोई सेटिंग है बैंकों में कि पैसे खिला देंगे, कागज नकली लगा देंगे, साफ काम है, साफ तरीके से है। आप आए हमारे ऑफिस में 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे, अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, असेसमेंट कराए एंड लाइक आप देखिए आप कितने के लिए एलिजिबल है।
0: ओके, एंड थोड़ी कितनी फीस है?
1: $199 है, $200 काम होने के बाद। लोग पूछते हैं फीस कम क्यों है, भाई साहब कोई सेटिंग नहीं है ना, फिर हम जो बेनिफिट आपको अच्छी तरह पास कर रहे हैं बिना कोई टीका लगाए, तो इसलिए हम इतने ठोक के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि कोई हमने टचवुड किसी का, लोगों ने हमारे पैसा जरूर देना 200-400 डॉलर, हमने किसी के नहीं देने, तो इसलिए अब साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं। नंबर नोट करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, काम होने के बाद $200 फीस है और कोई हिडन चार्जेस, मीठी बातें, परसेंटेज नहीं नहीं नहीं है। नंबर 437-264-31-75 437-264-31-75 हमें कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-264-3175 437-264-31-75
0: 437-264-3175 सराश दा एक नंबर है 437-264-31-75। सराश बहुत शुक्रिया सर।
1: थैंक यू
0: जी। सो वेरी गुड, रैशनल करो गल यार, थोनू बेनीफिट बेनीफिट बेनीफिट ही बेनीफिट हो रहा, तो जरूर थोड़े लिए हाजिर ने मिस्टर सारांश। तो देखो थोनू वधिया यार, लोन दुबारे ने पढ़ाई करो अपनी, तुसी एजुकेशन दे विच वाधा करो, तो वधिया जॉब जूब ते लगो, तो बेनीफिट ही बेनीफिट है। सो ओके, ये तो होगी सारांश होना की गलबात। एक मैं थोनू मल्ली टेंट सर्विसेज का नंबर फिर तो देव, क्योंकि मल्ली टेंट वाले ने जो टेंट लाता ना थोड़े घर, ए लगेगा कि थोड़े घर का बैंकुट हॉल ही बन गया। सो मल्ली टेंट सर्विसेज बहुत ही जबरदस्त टीम, छोटे तो लैके व्डे साइज तक के सारे टेंट इन्हों को अवेलेबल ने, टेबल चेयर डांस फ्लोर स्टेज बार लाइटा नाल लग्जरी पोर्टेबल वाशरूम। मल्ली टेंट 6479992569 6479992569। मल्ली टेंट सर्विसेज की टीम के संपर्क करो, तो अपने मनपसंद साइज का टेंट लवाओ, पखे पुखे चाहिए ने सारा कुछ। मैं कहना कोई ऐसी चीज जी नहीं करते, तो मास्टर जूलर की जी ज्वेलरी है ना, सोने की कोई भी खरीदारी करनी है, ये भी किसी विआह शादी के फंक्शन लिए होने वाली जी बोटी है उन्होंने वधिया सोने के राणी हार आदि लैके देने हैं, तो तुसी एक बार ना मास्टर जूलर की नवी लोकेशन एयरपोर्ट रोड से मेफील्ड 6231 मेफील्ड रोड से जाओ, जो नवा प्लाजा बनया 3000 स्क्वेयर फुट ऐसा एक लग्जरी इन्होंने शोरूम रेडी करवाया ना, बल्ले बल्ले बल्ले। तुसी कहोगे नवी यार क्या कमाल दी ज्वेलरी है, क्या सिलेक्शन है। सो विजिट कर लो ते मास्टर जूलर्स एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड ब्रांड न्यू, जो नवी लोकेशन हो तो उ चाह चढ़ दिता। सो जाओ मास्टर जूलर्स से गेड़ा मारो।

0: रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी के किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 6475415 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040 416-477-2040

क्या बात है, फ्राइडे जूनियर मौसम खूबसूरत होवे तो पनकली होवे दे वर्गी रीस है कितने यार। सो एंजॉय करो, वीकेंड है ते वीकेंड तुसी कहोगे नवी ईयर तुम तो काली पै जी वीकेंड दी। देखो जे हुण मैं थोनू थोड़ा एक्साइट करूंगा कि वीकेंड आ गया, और की चाहिए, तुसी भी हुण फिर अज भी इंजॉय कर लोगे, कल भी कर लोगे।

0: rates in the market with full coverage.
1: Home, auto, commercial trucking, the business insurance like call karo. Insurance advisor Amandeep Kaur Hurano at 416-618-2761. 416-618-2761.
2: Sanja Virsa Media le aayde second annual picnic.
3: Sunday 23rd August 11 AM to 4 PM at Balle Balle Farms.
2: Unlimited fun. Masti te apne anda hoega saath. Pangda, gidda, games, food stalls, mehndi, sab kuch reasonable rates te.
3: Tusi apni aad dishes bhi bana ke liya sakte ho. Pura picnic wala mahol. Punjab waliya vibes. Aajo fir 23rd August din aitwar svere 11 baje at Balle Balle Farms. 13219 Trinkozi Road, Caledon.
2: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जंजुआ नु कॉल करो 647-835-5294.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर नॉट ready for this.
3: पर हुन थोनु कार लेन ली रेडी करनगे. मॉर्गेज रिकिंग गिरीश शर्मा.
5: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स.
3: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा. प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ. डीलिंग विद ऑल बैंक.
5: कॉल 647-606-8110
3: और विजिट sharmamortgages.com.
6: नाले चोपड़ियां नाले दो दो.
7: आहो जी मेनू भी पता नाले ग्रोसरी नाले दिया खाना यानी दाना मंडी. दाना मंडी जिते हर तरह दी इंडियन ग्रोसरी दाला मसाले पिकल्स चौल चाय पत्ती फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
8: डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रेश चिकन बीफ गोट मीट सब कुछ मिलूगा. इना दे रेस्टोरेंट विच तुसी परांठे चना भटूरा वेज थाली वेज बिरयानी बटर चिकन विद नान दा स्वाद लो.
7: एक बार आओगे ते बार बार आओगे.
8: अनबीटेबल प्राइसेस सेल ऑल टाइम. दाना मंडी 1729 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन क्वीन एंड ब्रैमले.
3: Call Gagan or Govinder at 905-286-9257.
9: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल. इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए. अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाए. सर्विंग सिंस 1992. फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल. टू लोकेशन टू सर्व यू. 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9 07900560 6 Marconi Court Bolton 9 05 9 51 9 3 9 4. Stephen Furniture ki dhamake dar festival season se.
10: शादी दी मूवी बनवाउन ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने. बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251.
11: ट्रक एक्सीडेंट च रब ने हाथ दे के बचा लिया
12: ते कार दे खर्चियां नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया. अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ.
11: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम. लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान आरआरएसपी आरईएसपी टीएफएसए. कॉल करो
12: 6478-5529-4 647-835-5594.
13: ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਚੰਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ?
14: ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਟਰੱਕ ਸੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ. 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ.
12: ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟਰਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
13: 416-717-2938
12: 416-717-2929. ਕੁਆਲਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਇੰਕ 14 ਸਟੇਨਵੇ ਬੁਲੇਵਰਡ ਯੂਨਿਟ 4 ਇਟੋਬੀਕੋ.
15: ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

0: Sagar Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: Yaad hai mainu, jadon mera first accident hoya si, kinni pareshan ho gayi si main. Insurance naal deal karna, gaddi paint karawana, kinne chanjat. Thanks kardiyan, main Speedex Auto Collision walyan da, jinnan ne meri insurance naal khud deal kita, rental car bhi ditti, te meri car nu bilkul navi vargi bana ditta. Te tussi vi poncho, Speedex Auto Collision, 181 Rutherford Road South, Unit 11, te ya call karo 416-277-9221. 416-277-9221.
2: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
3: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
4: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
5: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।

0: जे तुसी भी फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015
1: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रेल्टर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री काट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बार फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट राइटर रेव सिंह दी तिखी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचण अते खरीदण विच तुहाडी हेल्प कर सकती है नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नूं फोन करो 647-740-9600 647-740-9600 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲਟਰ ਰੈਵ ਸਿੰਘ ਕਾਰਾਂ ਐਸਯੂਵੀ ਟਰੱਕ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 416-475-6600 $100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 416-475-6600 ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ ਲਿਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ 416-475-6600
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश खरीदिए जीटीए में कहीं और ना मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808
3: ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਚਨ ਚ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ
4: ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲਾਂਡਰੀ ਸੈੱਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ 801 ਬੋਵੇ ਡਰਾਈਵ ਨੀਅਰ ਚਕੂਜ਼ੀ 905-450-2828
5: नमस्कार सत श्री अकाल मैं आपका खुदा बख्श एंड आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म एट माता जी की चौकी
6: मान तू बताया मेरा दुख सारे ताल के
5: ऑन 4th सितंबर एट Eros, the convention center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Harman. Aur main ye batana chahta hu ki ye sham music aur bhakti se bhari hogi. Hum is din ko Janmashtami celebration kar rahe hain. Aur main aapko ek request karta hu ki sab ne apne family ke saath, doston ke saath, jitne bhi aapke close hai, sab ke saath aana hai. So guys, see you on 4th September.
1: A to Z किचन कैबिनेट भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 ਤੇ कॉल कर सकते हो
7: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice Insurance Agency. ਤੁਹਾਡਾ

0: मेडिकल इंश्योरेंस। नंबर हैगा जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station.

पूरा बैंड पूरा ऑर्केस्ट्रा नाल लाइव बैंड दे नाल लिविंग आर्ट सेंटर मिसिसागा पार्किंग बिल्कुल फ्री है।

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
1: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां?
2: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: ते 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
4: ओ काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

0: हाँ फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे यानी आज शुक्रवार है ते सब तो पहला तेजिंदर सिंह सिद्धू सुद्धमा बाले वालों प्रोग्राम दे विच निघा स्वागत है जी। अज शुक्रवार का दिन है और 14 तरीक हो गई अगस्त महीने की। इस समय देश परदेश की स्टूडियो की घड़ी से शाम के 3:10 से कुछ सैकेंड हुए ने। अपनी मुलाकात हुण तो लैके ठीक शाम के 6 तक हैगी आ और वीकेंड है और बहुत ही प्यारा जहा मौसम आ। बदल जे बार छाए हुए ने, लगता थोड़ी जी कणमणमण भी होगी तो थोड़ा जहा सिला जहा मौसम भी होगा, सुहावना जहा ऑलरेडी हैगा। तेजिंदर सिंह सिद्धू वालों जी आना सारे जी
1: जी नाल साथ दे रही है मैं मनप्रीत कौर तूर। मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है कि तुसी सारे ठीक होवोंगे, इंजॉय कर रहे हो बड़े खूबसूरत वैदर नू ते तुहाडा ते साडा साथ 3 घंटे दा आ। तुसी साडे नाल जरूर सांझ पा सकदे हो। स्टूडियो दा नंबर 905-564-5444 गलबात होगी। अज के प्रोग्राम काफी सारी गलां बातें करांगे, काफी सारा गीत संगीत भी होगा, कुछ स्पॉन्सर मैसेज भी लवांगे, तुहानू नवी नवी जानकारी भी देवांगे। एक एक नंबर है स्टूडियो का 905-564-6444।
0: सब तो पहला उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अल्लाह ईश्वर कह लो ओहदे नाम दे नाल आपां अज दा प्रोग्राम शुरू करदे आं हमेशा तरह ते फिर अगे जाके ते टॉप गियर विच रखांगे शाम दे 6 तक।
1: बिल्कुल
0: रेडी प्रोग्राम देश प्रदेश।

0: एक चूहा ते कॉकरोच भी। सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
1: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला ने ट्रीटमेंट कराई सी।
0: मैं तेरे पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरों बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
1: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
2: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो, जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं। सस्ते दा दावा नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
3: मैनूं पता तुहाडी।
4: Let's go to the X.
5: The CNE Grand 50/50 is on now. Get your tickets today at CNEF5050.com for more chances to win big and support a great cause. You could take home the guaranteed minimum grand prize of $250,000 or even more as the prize grows. Every ticket helps fund the CNE Foundation's community and youth programs. Please play responsibly. License RAF 156-8077.
6: Come and celebrate Toronto and do everything you want at the X.
7: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
8: Fuck.

0: देख चुके हो
1: तो फिक्र क्यों कर दे हो? नीलम से डोव कॉल है सॉल्यूशन फॉर एवरी सिचुएशन।
0: ये ऑफर कर देने बेस्ट रेट, इम्पेयर्ड क्रेडिट या बैंकरप्सी है, नो प्रॉब्लम।
1: इना कॉल नहीं, ए बी एंड ट्रस्टेड प्राइवेट लेंडर्स।
0: यू शॉप अराउंड एंड कम बैक टू नीलम।
1: आज ही कॉल करो नीलम से डोव नो
0: 647 6477398710 license number M2000 3450।

0: खास रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटल ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।